905-673-3337 कोई मर्जी कुछ भी कहे कोई कहता रहे टिकट मास्टर डॉट सी तो टिकटा चक लो एम ई विरक लाइव वेखण का जिहड़ा सबाब बना 30 अगस्त नूं शाम नूं द ग्रेट कनेडियन थिएटर दे विच रौनकां लगणियां भंगड़े पैणे आ ते लाइव जदों बाई ने गाया यार।

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छू मंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा इसे लिए तुहाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी अज ही कॉल करो 905-450-3333 एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लेने ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: पंजाबी लहरा या

0: बोलो 416-616-1627 जगदीश भाई संपर्क किया जा सकता है। ये भी उस दिन पूरी इन्होंने बेचारे ने टेंट दी सेवावां इन्हां दे सारियां सीगियां। असी रात नूं तकरीबन 9-10 बजे तक 11 बजे तक असी टेंट लाउंदे रहे, पर की कह सकते हैं हुण। जगदीश भाई थैंक यू सो मच, तुहाडा लव यू, तुहानूं बहुत बहुत दिलों दिलों देसी सैने फिल्म तों। जगदीश भाई ने कर लिया संपर्क। वीडियो फोटोग्राफी डीजी दिंग सेवावां लैणियां चाहुंदे हो तां 416-930-1251 ते संपर्क किया जा सकता। तो काफ़ी सारे मैसेज तो फोन भी आए हुए ने। तो नाल दी नाल आपां कंजरवेटिव पार्टी ने लिबरल सरकार तो अमरीका नाल फेल हुई ट्रेड डील का वेरवा मंग लिया जी। तो वह कहिंदे ने जिहड़े उन्हां दे अपने मंत्री ने ना ट्रेड मंत्री सोबले मजुमदार खरे की आ, चलो जो भी है। डोमिनिक रिपब्लिक नूं लिखिया पत्र, कंजरवेटिव आगू पीयर पोलीवर ने पार्लीमेंट सैशन सदन की मंग करती उन्होंने। चलो वेरी गुड, शाबाश। अमरीका की कनेडा नूं चेतावनी। ट्रांसपोर्ट सकत्तर सीन डफी ने कहा कनेडा नूं ट्रेड बार बहुत महंगी पवेगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का तंज 51वीं स्टेट वाला फायदा लै रहा है। कहिंदा कनेडा जे अमरीका सही दृष्टिकोण अपनाएगा तो शुरू होगी मुड़ गलबात, प्रधानमंत्री मार कारने साहब ने कहता भाई। चलो वधिया गल। अमरीका का टैरफ तो कनेडियन कारोबारियों के वर्करों के बचाव साड़ी योजना तैयार, फैडरल ट्रेड मंत्री साहब। कनेडा के वापस कनेडा ने वापस बुलाई व्यापारक टीम। अमरीका नाल रिश्ते तनावपूर्ण हो गए ने। तो कनेडा विच पंजाबी परिवार का घर सड़ के सुआह हो गया, माड़ी खबर। कनेडा च गिरफ्तार 3 पंजाबियों वालों नवी अर्जी दायर की गई, कहिंदे सानू सज़ा जिहड़ी देनी कनेडा च दे दो। अमरीका ने H-1B वीज़ा लई लगा सकदा 9.1 करोड़ दी रुपए की फीस। ते तेल दी एक बूंद भी नहीं जान देवांगे, हारमोज़ संकट ते ईरान दा अमरीका नूं सीधा सुनेहा। तो निजर कलिंग च आ गया जी, निजर दा कतल की जिम्मेवारी लैण मगरों गोल्डी बराड ते अर्श डाला विचकार वधिया विवाद, वीडियो वायरल हो गई। तो चीन में रॉबर्ट ने तोड़िया उज़ैन बोल्ट का रिकॉर्ड, 100 मीटर की दौड़ 9.39 सैकंड में की पूरी, चक दो फटे। तो परमिंदर जी हरपाल चीमा साहब की कहिंदे ने हुण, चन्नी साहब नूं की हो गया हुण यार, ये नहीं हटदे इक तां।
1: जी जी आपां उधर कहावत पाई सी कि इह गल तां मन्नी, पर इह दसो छली किहने भन्नी, छली भन्न किहने भन्नी उह पता लग गया जी। साबका सीएम चरणजीत चन्नी ने जिहड़ा परचा दित्ता सी उह परचा ठीक सी जां लीक सी, क्योंकि परचा लीक दी बहुत चर्चा अज कल। सो हुण वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने एक नवा दावा करता, वह कहिंदे सीएम चन्नी ने जिहड़ा एक कैमरे की मदद दे नाल जिहड़ा उह परचा नकल मार के कीता। सो एक वड्डा मुद्दा बन गया, और बीते दिनी पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जिहड़े अंदरले सिंडीकेट मैंबर ने उन्होंने सवाल उठाते सी कि उह तस्वीर खिंचण वाला बंदा कौन सी। हालांकि चरणजीत चन्नी ने यह जरूर कहता कि जिहड़ियां तस्वीर खिंचियां गईयां ने उह किसी पत्रकार ने, पर उह पत्रकार कैमरा लैके अंदर किवें पहुंच गया, बड़ा हाई लैवल का पेपर सी। सो मैनूं लगदा कि चरणजीत चन्नी लगातार विवादां च रहिंदे ने, कदे उहनां दा कुछ आ जांदा कदे कुछ आ जांदा। हुण जिहड़ा उहनां दा इह ताज़ा विवाद आ कि उहनां दी आउण वाली भविखी सियासत ते वी असर पाऊगा, जे परचा दर्ज हुंदा तां चरणजीत चन्नी ते वी परचा आउणा। इलेक्शन फिर ते ने सीएम दे कैंडीडेट ने चन्नी साहब, देखदे आ कि हुण नवां चंद की चढ़दा।
0: कौन दो हेडलाइन कर दो फटाफट
1: की हेडलाइंस। सियासी हलचल तेज, राहुल गांधी पंजाब च करनगे बस यात्रा। इंचार्ज भूपेश बघेल दी राहुल गांधी नाल मुलाकात मगरों पंजाब कांग्रेस तों मंगिया गया 1 हफ्ते दा शेड्यूल। उधर दिल्ली के साबका मंत्री और सीनियर आप आगू सतेंद्र जैन मुड़ अदालत च पेश। बहबल कला गोलीकांड मामले च भाजपा आगू विजय सांपला मुड़ तलब। साबका केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने नवी सिट अगे 27 अगस्त को पेश होने तो करती ना मंगी नवी तरीक। बिग ब्रेकिंग, अज तो आम आदमी पार्टी अज तो आम आदमी क्लिनिक रहनगे बंद। उधर 27 अगस्त तो पंजाब महाबंद तो पहला भगवंत मान सरकार पब्बा पार मुलाजम ते पेंशनर सांझे मोर्चे नाल सद लई मीटिंग। सुखबीर बादल अज तख्त श्री दमदमा साहब विखे मत्था टेकण के आरंभ करनगे ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆ ਜੀ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਜੁੜਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। 530 ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੱਲੂ ਕੱਚ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनू इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: जदों किसी दी नजर धुंधली होनी शुरू हो जावे, जिंदगी दे बहुत पल हौली हौली खो जांदे ने। गड्डी चलाउणी मुश्किल, टीवी देखना औखा ते अपने प्यारियां दे चेहरे भी साफ नजर नहीं आउंदे। इस लई बहुत लोकां ने LAL लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी चुनी है। एह प्रीमियम कैटरैक्ट सर्जरी माड़ी नजर नूं भी कस्टमाइज कर दिंदी है, बिल्कुल टेलर मेड विजन पेशेंट दी लाइफ दे हिसाब दे नाल। कई पेशेंट्स कहंदे ने कि लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी तो बाद मेरी दुनिया फिर साफ होगी, मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा, ड्राइविंग तो लेके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जांदी है। क्लिनिक दे सर्जन्स अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस, कंफर्ट अते केयर दिंदे ने ताकि पूरी जर्नी सेफ, स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे। जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो ता अज ही कॉल करो लूमिया। ऑफिसेज इन वॉन, डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी। डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी, उर्दू अते हिंदी बोल देने। होर जानकारी ले ईमेल करो punjabi@lumia.io, punjabi@lumia.io, 289-982-9597, 289-982-9597। जे तुसी जाना होवे किसी भी टोरंटो आइलैंड्स नो, सेंटर आइलैंड, वार्ड्स आइलैंड या हैनलिंस पॉइंट, ता लेके जाओ टी डॉट वाटर टैक्सी। फेरी दियां 2-3 घंटे दियां लाइनअप्स तो बचो अते लेके जाओ अपनी प्राइवेट टी डॉट वाटर टैक्सी। टी डॉट वाटर टैक्सी दी डॉक लोकेटेड है 1 क्वींस की ईस्ट ते, यंग अते क्वींस की ईस्ट दे बिल्कुल कॉर्नर ते। मामूली जिहा रेट अते आराम नाल राजिया वांग जाओ अपनी प्राइवेट वाटर टैक्सी ते। टी डॉट वाटर टैक्सी 6473708368। इन्हां दी डॉक ते पार्किंग भी अवेलेबल है, उत्थों तुसी अपनी टिकट्स भी बाय कर सकदे हो कैश या क्रेडिट कार्ड दे नाल। टी डॉट वाटर टैक्सी दी ऐप भी डाउनलोड करो। टी डॉट वाटर टैक्सी, द बेस्ट वे टू गो टू सेंटर आइलैंड।

0: इतने पैसे देता है हमें, लाइक कमीशन दे दे के, तो हमें लगता है वो ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छी चीजें हमेशा सस्ते में मिलती है, जो कि अब हवा है, हवा सांस ले रहे, सस्ते मिली ना, फ्री में मिली ना हमें, तो इसलिए पीछे ना जाइए, कोई चलाकी नहीं है, फंडिंग हासिल करें 0% पर, कोई भी इसमें हेरा फेरी नहीं है, साफ काम साफ तरीके से कर रहे हैं, असली डॉक्यूमेंट लगते हैं, एडिट नहीं होते डॉक्यूमेंट आपके इसमें।
1: वेरी गुड। अच्छा, जैसे फैमिली ऑफ फोर है उनकी कितनी बन जाती है फंडिंग, थोड़ा बताएं, क्योंकि हमारे पास टाइम बस एक दो मिनट ही है, इसमें अपना सारांश में बता दें। सारांश सारांश में बताएं।
0: तो अगर फैमिली ऑफ फाइव है $1,70,000, फैमिली ऑफ फोर है $1.5 लाख, जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा फंडिंग आपको आपके खाते में आती है। हमारी फीस हमेशा फ्लैट है $199, वन टाइम फीस है, काम होने के बाद में देनी है, तो ईमानदारी आपकी तक होती है। आसान से कोर्स करें फुली ऑनलाइन, जिसमें सिर्फ अपने अटेंडेंस लगानी है मंडे टू फ्राइडे 3 घंटे, फोन पे या लैपटॉप पे, कोई एज लिमिट नहीं है, हाउस वाइफ है, उबर ड्राइवर है, अनएम्प्लॉयड है, पेंशन पे एलिजिबल है, 0% पे लोन, जिसकी किस्तें 2.5 साल बाद स्टार्ट है, ऐसा कोई लोन सुना है जो 2.5 साल बाद किस्त स्टार्ट हो, और 15 साल में पे करते हैं, शुरू में ब्याज कितना, 0%, 2.5 साल बाद ब्याज कितना है, 2.5% पूरे साल का, मतलब $1,00,000 पे $2,500 ब्याज, वो भी साल का, महीने का भी नहीं। पीछे ना रहिए, बहुत लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, प्रॉपर ऑफिस है 1,000 square feet का, रेप्यूटेड लोकेशन पे 218 Expert Boulevard पे, 7 बंदे आपके लिए काम करें। नंबर नोट करें 4372-2531-75, 4372-2531-75, कॉल करो, असेसमेंट कराओ, ऑफिस आओ, 4372-2531-75, 4372643175, नंबर अगेन 4372431-75। रिफाइनेंसिंग ना कराओ, स्किल डेवलप करो, फंडिंग 0% हासिल करो बिना चलाकी के नाल।
1: जी बिल्कुल, ते देख लो किन्ना वधिया, क्रेडिट कोई चेक नहीं थोड़ा होना हैगा, कोर्सेज तुसी वधिया करके अपने आप नू अपग्रेड करो, वधिया जॉब मिलूगी, जिन्नी वार मर्जी तुसी कोर्सेज दे विच इन्वॉल्व हो सकते हो, है ना, कहने का मतलब तुसी एलिजिबल हो सकते हो, एक कोर्स थोड़ा खत्म हुंदा तुसी दोबारा करो, थानू फेर फंडिंग जड़ी मिल जानी है। सो तुसी नंबर नोट कर लो जी, इन्हां दा बड़े वधिया तरीके दे नाल थोड़े नाल गलबात करनगे, सारांश दा नंबर, सारांश नंबर बोले एक बार फिर,
0: नंबर है जी 4372-2431-75, 4372643175। स्कोर आपका 0 भी क्रेडिट का एलिजिबल है, क्यों, गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा, पीछे ना रहिए, 4372-2431-75।
1: जी थैंक यू सराश,
0: थैंक यू
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, सारांश नाल तुसी गलबात कर लो, बहुत वधिया जानकारी थानू मिलूगी। कई बार ना आपां सोचदे रहिंदे आ वी आ पता नहीं इदां किवें होऊगा, जे आ हो गया तां इदां, मतलब जे जे करके बहुत सारे क्वेश्चन अपने माइंड दे विच हुंदे आ, पर तुसी जो भी थोड़े मन दे विच आ रहे आ ना वी आ किवें हो जूगा, जे इदां हो गया असीं किवें वापस करना है, या किन्नी देर दा कोर्स है, ऑनलाइन क्लासिज है कि इन परसन है, जां क्रैडिट चैक बारे, यानी कि बड़े सारे क्वेश्चन हुंदे, क्योंकि थोड़ियां मैनूं बहुत सारियां कॉल्स आउंदियां बाद दे विचों, है ना, या कई बार एज दा हुंदा कि साड़ी एज इन्नी होगी असी एलिजिबल हैगे आ। तुसी कोई भी क्वेश्चन करना नंबर नोट कर लो, यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक दे सारांश नागपाल दा, 4372-2431-75, 4372643175। ते लो जी मैं थानू नंबर एक बार फिर दे देवां दीपांश दा, पहला सीगे सारांश हुण हैगे दीपांश, क्योंकि दीपांश ने भेजियां मैनू अपडेट भेजी आ, नवीं टिकटां पहुंचियां, कहिंदे अर्ली विंटर सेल जिहड़ी आ लग गई आ, जे तुसी जाना चाहुंदे हो जनवरी दे सैकेंड वीक दे विच, यानी कि नवें साल दे विच तुसी जाना चाहुंदे हो लोहड़ी मौके, प्राइस शुरू हो रही है टिकटां दी $965 $965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨ ਵੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਹੈ ਦੋ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਊ ਸੀਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹਲੇ, ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਦੋ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਵੇ ਹੈ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, 1,045 ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਹੈ, 1 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਵੇ ਹੈ, 965 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਸਟੋਪ ਦੋ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਵਨ ਵੇ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਸਟੋਪ ਦੋ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਟਾਫਟ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 905-673-1400-9056-73-1400। ਹਾਂਜੀ ਸਰ
2: ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨੋਂ।

0: आपके पास इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे भिजा दिया, फोटो के साथ देख लीजिए।
1: अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपका भी जी। सबको
1: आज बड़ा स्पेशल दिन है, मोहम्मद साहब का जन्मदिन है आज। काफी वधिया तरीके दे नाल उन्हां दी गल्लां बातां सिखियावां नूं जिहड़ा हैगा मोहम्मद साहब, बिल्कुल जी साडी मुस्लिम कम्यूनिटी नूं बहुत बहुत वधाइयां अज। ते उहदे बारे वी क्योंकि भाजी ने कुछ कहना होऊगा, पर 59 हो गए, मैं नंबर एक बार दीपांश दा दे दिंदी आ। तुसीं ना जे बहुत वधिया टिकटां, वन वे है, एक टिकट 965 दी है जिहड़े तुसीं जनवरी च जाणा, ते एक हैगी है अक्तूबर च दिवाली मौके, ये 1045 दी है, वन वे है टोरोंटो टू दिल्ली। 905-673-1400 हुणे कॉल करो, 905-673-1400 ते तुसी कॉल करके अपनी टिकटां जिहड़ियां बुक करा सकदे हो। लो जी समां हो गया अपना जाण दा, ते मेरे नाल कोई भी गलबात करनी है, कोई थोड़ी कोई भी नीड है, क्योंकि ना इंश्योरेंस इन्नी।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: यार इना इंश्योरेंस ने ते तू कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानूं अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: नमस्कार सत श्री अकाल मैं आपका खुदा बख्श एंड आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म एट माता जी की चौकी
4: मान तू बताया मेरा दुख सारे काल के
3: ऑन 4th सितंबर एट Eros, the convention center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Harman. Aur main ye batana chahta hu ki ye shaam music aur bhakti se bhari hogi. Hum is din ko Janmashtami celebration kar rahe hain. Aur main aapko ek request karta hu ki sab ne apne family ke saath, doston ke saath, jitne bhi aapke close hai, sab ke saath aana hai. So guys,

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets Nepal de vichu, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Jan to see visa services Nepal de vichu, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upar.
5: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
6: 416-570-0157। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
9: आज
10: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
11: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा?
12: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां।
13: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर विद सुखीर निज्जर।

0: Live and Cellular Point present AmiWeb Live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo Ready Hojo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: दोस्तों देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नूं या चलो एएम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उहनां नूं सुनण वास्ते जां देश परदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉगिन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने आईपीटीवी बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नूं कलेक्ट करो उत्थे तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7

सा क्या बात है, आरिफ लोहार दमदार आवाज दमदार परफॉर्मर, क्या बात है ने? सो प्रोग्राम है पंजाबी रा, ते नंबर है अपना 6474988486647498848। एक तुसी चैतानिया इमिग्रेशन सर्विसेज नु याद रखो, जे थोनू रेफ्यूजी क्लेम फाइल करने लई मदद दी लोड है, कैनेडा दे विच रेफ्यूजी क्लेम फाइल करने दे लई सही लीगल गाइडेंस ते स्ट्रॉन्ग केस दी प्रेपरेशन की तैयारी दी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है। हर केस डिफरेंट हुंदा ते चैतानिया इमिग्रेशन वाले समझने हर एक थोड़े मसले नू ते ऑनेस्ट एडवाइस देंगे, प्रॉपर लीगल एडवाइस दे विच भी मदद करनगे। सो थोड़ी कहानी नू समझना, थोड़े केस नू मजबूत ते तरीके दे नाल प्रेजेंट करना। रेफ्यूजी दा अप्रूवल रेट इहदा अप्रोक्सीमेटली 82% है, ते नंबर है 6474732207 6474732207 6474732207 दे उत्ते कॉल तुसी जरूर करो। एक यार थोड़े अपने शहर एमी एमी एमी हुई पई है, ते एमी विरक आ रहा, ते एमी विरक साहब लाउणगे रौनक इस एतवार नूं एट ग्रेट कनेडियन कसीनो थिएटर वुडबाइन कसीनो दे नाल ही, बिल्कुल थिएटर है वुडबाइन मॉल दे बिल्कुल ऑपोजिट। ते फिर कमाल दी गीत सुणांगे, है तेरी वंगदा लैला नाप, उन्हें मत्था चुम्मिया पहला या फिर हथ चुम्मे तेरे, पता लग जू एमी जी ने पुछांगे जरूर। ते किस्मत दे गीत दरिया वाह बई वाह। ते एमी वर्क दी टिकटां लई ticketmaster.ca ticketmaster.ca ticketmaster.ca ते तुसी जरूर विजिट